0: 어머니, 그것도 문화의 처신망이 아버 요 젤도가 언니 쪼꼬스 잡아들려고 쳤다.
1: 아버 까봐들려우누 머리 요 저만하면 순기나 사례 서질러차. 아버 요 젤도가 쪼꼬스 요 낙고다 구레나가래 사례가 알아보차대.
0: 미리 어머니 굴시뿔 뿐만 나가르빨리까 오다넘어차 몸라 쪽대키 알리까지 다친 바스틴티라 관찬정가 섬밋 따다 퍼니처 운동차 땡거에를 야해 운데나
1: यसका बाजे लाटाले हानेर बारीका पाट्यामा पुर्याइदियो भनेको त बुद्धि पो दिएर गएछ यसका बाजे म चाहिँ गुटुङचुङ डगुरेर गए अहिले भटका कञ्चनजङ्घा समिल तथा फर्निचर उत्तरमा
2: हामी कहाँ साल सिस्टौ असना सालको चौका झाल झोका कडी पाउनुका साथै फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू होलसेल एवं फुटकर बिक्री गरिन्छ
3: कञ्चनजङ्घा समिल तथा फर्निचर उद्योग तुलसीपुर महानगरपालिका छ गुमरासो डाङ प्रोप्राइटर हेमन्त प्रकाश ओली सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9558723894 9478814894
4: के तपाईँ विज्ञापनमा लगानी गरी आफ्नो व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन गर्न चाहनुहुन्छ यदि त्यसो हो भने हामी तपाईँको माध्यम बनेर आएका छौ विज्ञापन शाखा रेडियो प्रकृति एफएम 93.4 MHz सल्यान रोड तुलसीपुर दाल सम्पर्क फोन नम्बर 0825218447
5: र 0825218480
6: बिहान 9 बजे को प्रकृति समय सन्देश धुलो र धुवाबाट सधैं बचौं।

अस्पतालसँगै एउटै परिसरमा क्यान्सर उपचारमा नेपालकै अग्रणी अस्पताल। हाम्रो हेल्पलाइन 023-535-942 023-535-942।